0: यो BFBS कुल घर रेडियो हो।
1: ब्रो कहाँ छ?
2: यो ब्रो के छ? म बाटोमा।
1: ओके आज राति मेरो वाच पार्टी है, म केटाहरू सबैलाई टेक्स्ट गर्छु।
2: पर्फेक्ट पर्फेक्ट, ल सी यु इन द इभिनिङ म्यान।
1: ओके ओके

धेरै जाने माया केयर सिंह लिम्बुले गाउनुभएको मिठो गीत सुन्यो श्रोता। प्रभातकालीन आवाजको पहिलो घण्टामा हुनुहुन्छ। बिएबिएस गोर्खा रेडियो ब्रुनाईको प्रस्तुति हो प्रभातकालीन आवाज। अब आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भावको बारेमा जानकारी लिन लागौ। सुरु गरिहालौ एक अमेरिकी डलरको बाट। खरिद दर 150 रुपियाँ 62 पैसा, बिक्री दर 151 रुपियाँ 22 पैसा। युरो एकको खरिद दर 172 रुपियाँ 75 पैसा, बिक्री दर 173 रुपियाँ 43 पैसा। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर 199 रुपियाँ 33 पैसा, बिक्री दर 200 रुपियाँ 12 पैसा। स्विस फ्रान्क एकको खरिद दर 186 रुपियाँ 63 पैसा, बिक्री दर 187 रुपियाँ 37 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर 105 रुपियाँ 63 पैसा, बिक्री दर 106 रुपियाँ 5 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिद दर 106 रुपियाँ 41 पैसा, बिक्री दर 106 रुपियाँ 84 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर 116 रुपियाँ 62 पैसा, बिक्री दर 117 रुपियाँ 9 पैसा। जापानी जेन 10 को खरिद दर 9 रुपियाँ 34 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 37 पैसा। चाइनिज युआन एकको खरिद दर 22 रुपियाँ 25 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 34 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिद दर 40 रुपियाँ 13 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 29 पैसा। कतारी रियाल एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 35 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 52 पैसा। थाई भाट एकको खरिद दर 4 रुपियाँ 58 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 60 पैसा। युएई दिरहम एकको खरिद दर 41 रुपियाँ 1 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 17 पैसा। मलेसियन रिङ्गिट एकको खरिद दर 36 रुपियाँ 41 पैसा, बिक्री दर 36 रुपियाँ 55 पैसा। साउथ कोरियन वन 100 को खरिद दर 9 रुपियाँ 84 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 88 पैसा। स्वेडिश क्रोनर एकको खरिद दर 15 रुपियाँ 72 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 78 पैसा। डेनिस क्रोनर एकको खरिद दर 23 रुपियाँ 12 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 21 पैसा। हङकङ डलर एकको खरिद दर 19 रुपियाँ 22 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 30 पैसा। कुवेती दिनार एकको खरिद दर 490 रुपियाँ 14 पैसा, बिक्री दर 492 रुपियाँ 9 पैसा। बहराइन दिनार एकको खरिद दर 399 रुपियाँ 52 पैसा, बिक्री दर 401 रुपियाँ 11 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल एकको खरिद दर 391 रुपियाँ 24 पैसा, बिक्री दर 392 रुपियाँ 79 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भावको जानकारी पुरा भयो। अब गीत सुन्न जाउँ फेरि। प्रजिना गुरुङको पालो परेको छ, नखेल भन्दै हुनुहुन्छ।